प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साडे प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। ये शरीरा मेरिया इस जग में आए के, इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द दे विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इक्को ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की काम किया है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जागाए, तेनू शरीर मिलिया सी, उस शरीर दे नाल तू की पाया, की अचीव किया है। देखते हैं कि यह शरीर तेनू दिता सी, इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई काम करना सी, तू कुछ लाहा खटना सी, जिसके वास्ते ये इंस्ट्रूमेंट दिता गया सी। पर कहते हैं ये इंस्ट्रूमेंट ही तू बिगाड़ लिया है, भूडी चाल, इसकी चाल खराब हो गई है, सुनी तरह तुरदा ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी सारी की सारी ओह गलत

माए बाप पूत हित प्राता, कहते हैं किसी ही बात कहात किसी ही पे सगले लर लर मुआ बात बात विवाद, हरेक दे जीवन च बात विवाद है, हरेक दे जीवन च बात विवाद है, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी किसे नाल नहीं बनती, किसे दी पुत्र नाल नहीं बनती, किसी की धी नाल नहीं बनती, किसी की सहुरे नाल नहीं बनती, किसी की सस नाल नहीं बनती, किसी की पति नाल नहीं बनती, किसी की पत्नी नाल नहीं बनती, किसी की किसी नाल नहीं बनती। बात साडे जीवन च बात बहुत, झगड़ा बहुत, माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मिलो दुआ, किसी ही वाद घाट किसी ही पै सगले लर लर मूह, किसी दे थोड़ा जा घट किसी दे थोड़ा जा वद, सारे कहते लड़ लड़ के मर रहे हैं। इस चीज च ए रतन जन्म जड़ा गवाया गया, मिलिया किसी होर कारज दे वास्ते, स्वाद बाद ईरख फिर ईरखा ईरखा, मद माया अते माया दे नशे दे विच मद दे विच, स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया, इन्हां चीजां दे नाल लग के रतन जन्म गवा दिता। तेनू इस वास्ते दिता सी, तेनू इस वास्ते ये प्राप्त होया सी, प्राप्त इस करके होया सी कि भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, यही तेरा एक मौका सी गोविंद नू मिलन दा, गोविंद नू मिलन दा, उस नू मिलन दी ये जो वारी सी ये तू एना चीजां दे विच ही चुकाती है, इन्हां चीजां दे विच ही वेस्ट करती है। तो फिर महापुरुष ताड़ना नाल भी आखदे हन कि अंधले क्या पाया जागाए, कहिंदे हन ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, तू की कम कीता है। बाणी च फरमाया है कि असी किस तरह अपना जीवन गवाने, ए तेतों हिसाब तेतों ए सवाल ते तो लेखा पूछा जाना है। कहते हैं

0: जिन्ह ने हाले तक यह काम नहीं किया, अपना मूल नहीं बुझिया, असि कितों आए हाँ, किस दे नाल संबंधित हाँ, केड़ी साड़ी जड़ है, केंद्र जिन्ह ने अपना मूल नहीं बुझिया, से पशुआ से टोर जियो, वो पशु हन टोर गवार हन। केंद्र हन तू जे ते ओ कम कीता, फिर ते तेरा जीवन तेरा शरीर सफला, नहीं ते आ कुछ जो महाराज ने बाणी चाकी, से पशुआ से टोर जियो। एक जगह होर आखते हैं, केंद्र हन
1: बिन बूझे मिथ्या सब भय,
0: कहते उसनू बुझे तो बिना जो कुछ भी तुसी कीता है, अकम्पलिश कीता है, बनाया है, इत आद कहते सब बेकार है। बिन बूझे मिथ्या सब भय, बिना उसनू बुझण तो सब कुछ कहते बेकार। अते कहिंदे ने एक वस्त बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। कहिंदे हन उस एक वस्तु नू तू बुझ ले ते तू पाक है, तू पवित्र है, निर्मल है। अगर तू उस नू नहीं बुझदा तू फिर कहिंदे हैं महाराज जी तू बहुत नापाक है, नापाक अपवित्र है, मैला है। तो वो काम करन दे वास्ते असी वाहिगुरु जी की कृपा दे नाल ए मनुखा जन्म विच आए सी, अपनी आत्मक होंद नू पहचानन ले, अपनी रूहानी जो दौलत है उस नू प्राप्त करन ले, अपने अंदर अकाल पुरख वाहिगुरु की जो बादशाहत है उसनु हासिल करन दे वास्ते असी ये मनुखा जन्म तारिया सी। दोने कल दे और अज दे शब्दां दे विच महाराज जी साडे ते सवाल कर रहे हैं, आओ असी अज सवाल का जवाब देन जोगे हां जा नहीं हां, असी की जवाब दे सकते हैं। गुरु बाबे दे सामने सच बोलना है, गुरु बाबा जी के सामने सच बोलना है, और बोल के ना सही अपने अंदर ही बोलना है, और कहना है महाराज कि मैं वो काम किया या नहीं किया, इसनू एडमिट करना है, कन्फेस करना है। गुरु बाबा जी सवाल कर दे अंधले क्या पाया जा गाए, तो असं कह सकते महाराज कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। गुरु महाराज जी कहते हैं ए शरीरा मेरा इस जग में आया कि क्या तुद कर्म कमाया, असी आख सकेंगे महाराज जी मैंने पता ही नहीं सी की करना है, मैं ते स्वाद बाद ईरख मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया, मैं ते आ कीता है। स्वादां च प्यारिया इन्हां दे विच मैं अपना जो है वो जन्म गवा दिता है, इन्हां दे विच अपनी जिंदगी मैं लगा दित्ती है। हुण आओ सारे फॉर फ्यू सैकेंड्स अपने अंदर रिफ्लैक्ट करिए कि ए पेनफुल है या नहीं, ये सानू हर्ट करता है या नहीं करता, इसका कोई अर्थ है या नहीं। जहां के सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सारियां गल्लां सुन लिया जान लिया फिर भी चुपचाप चुप दे चुप बैठे रहे, कोई असर ना होया, असी आपो अपने आप नू अज इत्थे बैठ के इस सवाल करके पुछ के जाना है कि मैं की कीता है, मैं की पाया है, ते अगां लई मेरा की प्रोग्राम है। पिछली जिंदगी गुजर गई जिवें सुपना गुजर जांदा है, पिछे मुड़ के देखो ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 30, 40, 50, 60 ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਾਠ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਲਕ ਝਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੀ ਕੇਰੇ ਮਾਠ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਮਨ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਛੋਡੇ ਜਮ ਦੀਆ ਦਮਾਮਾ ਆਏ। ਮਨ ਜੰਜਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗਣਤ ਗਣੀਏ ਸਹਿਸੇ ਜੀਏ, ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਦੂਏ ਧੀਏ। ਆ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਗਣਤ ਗਣੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਤੇ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਦੂਏ ਧੀਏ, ਇਹ 2, 3, 4, 5 ਆਦਿ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਜੋ ਵਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੂ ਕੁਛ ਬਿਖਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਿਖਰਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੋਰਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਆਓ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਗਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਾਂਗੇ।

शरीर सरोवर भीतर है, शरीर सरोवर दे अंदर। कल दे कीर्तन च असीं विचारिया सी ना कि महाराज जी वो जिहड़ी वस्तु पानी है वो है किथे, वो किथे है? कहिंदे हन अंतर तेरे निधान है तू बाहर वस्त ना पाल। वो निधान, वो खजाना, वो दौलत, वो बादशाहत कहिंदे तेरे अंदर है। अज महाराज सरोवर दी सिमली दे के कह रहे हन कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर एक सरोवर है जिस दे अंदर की है अच्छा है, बहुत कमाल है, बहुत खूबसूरत अच्छा है। कमल अनूप, अनूप दा मतलब है जिसकी कोई मिसाल ही ना दिती जा सकती, अति सुंदर, यूनिक, अनपैरल। कहंदे एक कमल है जो इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर है। सानू पता है, तो सानू पता ही नहीं साड़ा शरीर की है, इस दे विच की है। शरीर सरोवर दे अंदर कहंदे एक ऐसा खूबसूरत कमल है, एक कमल फुलां दे नाल भरिया पिया है, अते इतने वो खूबसूरत हन कि उन्हां दी होर कोई मिसाल नहीं मिलती। अच्छा महाराज होर की है? कहंदे परम ज्योत, ओ ज्योत जड़ी तमाम जीवां दे विच है, सब मैं ज्योत, ज्योत है सोए तिस दे चानन, सब मैं चानन होए, परम ज्योत, डिवाइन लाइट, सुप्रीम लाइट, परम ज्योत, पुरखोत्तमो, पुरखां दा भी पुरख, पुरख ओतम, अकाल पुरख वाहिगुरु, जो तमाम नारियां नू पुरखां नू पैदा करन वाला पुरख है, ओ परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख ना रूप, जिसकी कोई शकल नहीं नजर आती, जिसका कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है। कहंदे जांके रेख ना रूप, ओ इस शरीर रूपी सरोवर दे विच। तो हुण सारे इस पंक्ति नूं दास तो बाद अद्धे दे हिस्से च बोलियो, ताकि असीं अज ए नुक्ता लैके जाइए कि कमाल दी गल है, असीं ते सरोवर बार संगमरमर दे नाल बने होए पानी दे नाल भरे होयां नूं ही सरोवर समझदे रहे हां, इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे शरीर नूं सरोवर आख रहे हां। कहिंदे हन शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे अच्छा कमल अनूप, परम ज्योत पुरख ओतमो जांके रेख न रूप। सो ए शरीर एक ओ वस्तु है जो कि शरीर एक सरोवर है, इस सरोवर दे विच रब रूप कमल है, अते इस शरीर रूपी सरोवर दे विच ओ परम ज्योत है, ओ पुरख ओतम है, पुरखां दा पुरख है, जिसकी कोई रूप रेख रंग आकार नहीं है, फॉर्मलेसनेस दे विच है। तो असा ने अपने इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर जाके इशनान करके, इस शरीर रूपी सरोवर दे अंदर इशनान करना है, शरीर दे अंदर जाना है, अते इस शरीर दी अंदर दी दुनिया जो है, अंदर दा जगत जो है, उस दे विच प्रवेश करके फिर ओ जो रब रूप कमल है उसनु प्राप्त करना है। और जो ही असी उस कमल दे दीदार करते हैं, वो कमल सुगंधी दे नाल, खूबसूरती दे नाल ब्लूम कर रहा है, खिलिया पिया है, अते उस दे नाल जो साड़ी जिंदगी है वो कमल दे फुल वर्गी हो जाती है, अंदर
कमल फुलां दा बगीचा लग जांदा है, अंदर एक बाग खिल जांदा है। तो ये सत पॉइंट आप जी की सेवा दे विच रखे हैं। अगले छे जो हैं वो कल तो असी आरंभ कराएंगे और असी इन्हां नूं नोट कर लईए ताकि सानू ये पता होवे कि शरीर की वस्तु है। ये दुर्लभ है, ये मंदिर है, ये रब की कामणी है, ये एक घोड़ी है जिस दे राही असी अपनी यात्रा नूं तय करना है। ये सब तो उत्तम है, श्रेष्ठ है, जो सारे ब्रह्मांड दे विच है वो इस दे विच है। अते ए एक सरोवर है जिस दे विच रब रूप कमल खिलिया पिया है। असी की कीता है, साड़ी ट्रेजडी की है कि ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को कमल की सार नहीं मूल पाई। शरीर दे विच ऐबां दा, एडिक्शन दा, स्वादां दा, बुरियां आदतां दा चिकड़ कर लिया है ते मन बस उस चिकड़ चो ही नहीं निकल सकिया, अगां कमल तक पहुंचे ही नहीं है। कमल की सार नहीं मूल पाई, कमल दी सार ही नहीं पाई। अगले छे नुक्ते आप जी की सेवा च अर्ज करन तो बाद फिर आप जी सेवा च जो कीर्तन होणगे वो होणगे कि उस कमल तक असी किवें पहुंचना है, उसके ढंग की हैं, उसकियां विधियां की हैं, उस कमल नू खिलाण दे वास्ते कि वो खिले उस दियां की रिक्वायरमेंट सन। यह कीर्तन आने वाले दिनों दे विच होणगे। आप जी इसे तरह दर्शन दियो टाइम सिर ताकि इस लड़ी नू असी जो है गुरु बाबा जी की कृपा दे नाल संपूर्ण कर सकीए, शरीर नू जान सकीए ते शरीर दे अंदर जो है उसनू जान जाइए ते उसका रस्ता समझ लईए कि उसे तक किवें पहुंचना है। बस साडी समझ लो मंजिल पूरी हो गई, साडा जीवन सफला हो जाएगा। फिर मैं रिपीट करा, शरीर नू समझ लईए और शरीर नू समझन तो बाद इस नू सानू साधना पैना है, इस नू सानू फिर कढ़ना पैना है, इस दे विच चेंजेस लियानियां पैनियां हैं, इस दे विच कई सारियां तब्दीलियां लियानियां पैनियां हैं। महाराज जी आखदे हन तरत काया साध के, ये धरती रूपी काया नू साधना पैना है। इस उते बहुत सारा कम, बहुत सारी मेहनत करनी पैनी है, वो सारा कुछ अगले कीर्तना दे विच आएगा। जदों असीं शरीर नू समझ लवांगे, इस नू साधना किवें है वो समझ लवांगे, इस शरीर दे अंदर की है वो समझ लवांगे, उस तक पहुंचण दा रस्ता की है वो सुन लवांगे, समझ लवांगे, उस तों बाद असीं उस अंदरले जगत की खूबसूरती नू एक्सप्लोर कर लवांगे। अते जो अंदर साडे वस्तु नू पाउण नू महाराज ने कहा है उस नू असीं पा लवांगे, जीवन दी यात्रा साडी सफल हो जाएगी। भूल चुक दिखे मां प्रेम नाल इस पंक्ति नू गाओ, ए शरीरा मेरिया इस जग

अगर कोई सोच आ जाता, अगर कोई सोचन आता मतलब पाप भर के किस तरह भेजना, किस तरह खत्म करना, वाहेगुरु के नाम हर बारी जो एक सोच आ जाता वाहेगुरु के नाम भेजो रब वाल तेरे को नहीं रहेगा। है वाहेगुरु का मतलब कारण यही है असं ही वरतते हैं कि असी खालसा बन जाए, खालस के रहे, गुरु के वल जाए, गुरु

पूछो भी तेरा प्यार करूंगा, कोई होर पूछे तो प्यार पूछे मेरे तो, आप पूछ दे मालिक, मेरा मालिक आप पूछ दे। भाई साहब ने शेर लिखा एक नाबूद कहते नहीं था हेच निशान, हेच मैंने कुछ भी निशान, नबूद हेच निशान ज आसमान व जमीन, नबूद हेच निशान ज आसमान व जमीन, शौक रूए तो आबुर्द दर सजूद मारा। जदों कहिंदे आकाश दा नाम निशान नहीं सी, जदों कहिंदे जमीन दा नाम निशान नहीं सी, इत्थे उदो की सी अरबद नरबद तंदू का वो अंधेरा सी, जदों जदों कोई चीज जहूर विच नहीं सी आई, ना को मकान ना कोई दरख्त ना आप पानी ना कोई पैदाइश सी, ना बूद हेच निशाने से आसमान जमीन, के शौके रूए तो आवर्द दर सजूद। मैं ता तेरे शौ तेरे दर्शना दी चाहे अपने मन विच रख के उदों दा ही थानू नमस्कार कीती हुई है जदों ते धरती आकाश भी नहीं सी। हुण दसो इहदे नाल कोई पहुंच सकदा कह सकदा भी मेरा इन्ने सालां दा गुरु नाल प्यार है? वो कहिंदे उदों ता धरती आकाश भी नहीं सी, पानी भी नहीं सी पैदा होया, कोई जीव जंतु दी तां बात ही क्या है, उदों दा मैं तां तुहाडे दर्शनां नूं लोचदा, उदों दा मैं तां शौक ए रू मैंने हुंदा मूंह तुहाडा मूंह दे दीदार करन वास्ते, उदों दा मैं तां सजदा अदाई कीती होई है। भाई महाराज बड़े खुश, संगत भी बड़ी खुश। महाराज कहण लगे नंद लाल जी खालसा आप तो खुश हो गया ते मैं भी खुश हां, कुछ मंगो, की मंगदे तुसी? हुण ओदी मंग देख ली, जे सानू गुरु कहे पे तुसी मंगो की मंगदे तां अपने अंदरों देखो सानू मंगना ही ना आवे पे की मंगे, बस ओ टाइम जेड़ा कहू गुरु पे तुसी मंगो सिखो की मंगदे, साडा सोचदे ओ टाइम निकल जाए की मंगीए। जे ते पा मकान है नहीं ओ मकान मंगण लग पो, जे ते पा पुत है नहीं ओ पुत मंगण लग पो, इदां दीआं साडीआं गुरु दे सामने आण के बस इदां दीआं गल्लां हुंदीआं। असि उत नाम की दात मंगते नहीं जिद मगर सारिया चीजा भजिया आंदियां, नाम सिमरन वाले तो सारिया चीजा मगर भजिया आंदियां, तो असि जड़ न हथ पाते ही नहीं, नाम नंगते ही नहीं, असि उरलिया उरलिया चीजा जेड़िया चीजा साडे लिए दुखदाई हैं ना ओह चीजा असि मंगते हैं, नहीं तो अपने अपने अंदर झाती मार लेगी। की मंगते हैं असि गुरु नमस्कार करके? बस फनाह होने वाली चीजा और फनाह कर देन वाली चीजा उ मंगते। भाई नंद लाल साहब न कहते खुश हो गया खालसा, मैं भी खुश हां, मंग की मंग, जो कुछ मंगया वह भाई साहब ने अपनी कलम ना लिखिया। कहिंदे ने हर कस बजहां नशबो नमा मेहात, असपो शुतरो फीलो तिला मेहात। हर इंसान कोई ना कोई साहिब मंग करता है, हर कस बजहां हर इंसान इस जहान दे विच फलरश होना मंगता है, मेरी चढ़दी कला हो जा, मैं अमीर हो जावा, मैं ओ हो जावा, मैं ओ हो जावा, हर इंसान दी ख्वाहिश ए होई। हर कस बजहां नशबो नमा मेखा हर असपो, असप मैंने हुंदा घोड़ा, हर इंसान सवारी मंगू पहला, असपो शुतरो शुतर मैंने ऊट, फील फील मैंने हाथी, तिला तिला मैंने सोना, एहो चीजा मंगदियां दुनियादार ने, असपो शुतरो फीलो तिला मेखा हर, हर कस बराए खेश, हर इंसान अपने पेट वास्ते यानी अपने वास्ते चीजे खाहद चीजा मंगदा रब तो, पर नंदलाल ए चीजा नहीं मंगदा। नंदलाल साहब तुसी के की मंगदे? हर कस बराए खेश चीजे खाहद गोया जे खुदा याद खुदा मेखा, मैं थोड़े तो वाहेगुरु दे नाम दी दात मंगदा। नंदलाल थोड़ी याद और अकाल पुरख की याद आप जी तो मंगना है, बख्शिश करो मेरी झोली च नाम दा दान पाओ, साडे ते रहमत करे सतगुरु, साडी झोली भी नाम दी दात पावे। नाम सिमरन वाले दियां तां सब दातां मगर उहदे पचियां, इसलिए जदों सानू चांस लगे सतगुरु नूं नमस्कार करन दा तां नाम दी दात मंगनी चाहिए। हर कस बराए खेश चीजे खाहत गोया जे खुदा याद खुदा में खाहत।
तो आओ सारे कहिए मांगना मांगना।

सुनने वाले लोग हैं, कीर्तन करने वाले हैं। कीर्तन एक ऐसी चीज है, प्रभु की कीर्ति करनी और राग ताल गुरबानी और प्यार उसके बाद जिंदगी में सिखलाई होनी, ये सब चीजें बड़ी जरूरी हैं। और सबसे ऊपर है इंसान का जो प्यार है, प्रेम है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने अपने सारे शरीर पे प्रभु

गुरुदेव बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया तो एक राजी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोली, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतनी निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।

कृपा करो, दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर, लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। वट एवर यू डिजायर यू शैल रिसीव दैट रिवॉर्ड, एंड यू शैल नॉट बी अफ्लिक्टेड बाय पेन एनी लॉन्गर। काचे भांडे साज निवाजे, अंतर ज्योत समाई। ही क्रिएट्स एंड अडॉर्न्स द अर्थन वेसल्स, ही इन्फ्यूजेस हिज लाइफ विद इन देम। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है, हम तैसी किट कमाई। As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaap kiya sab apna, eho aavan jaana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aave, mohe ant liptaana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kari har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।